जो जल पाथौ नेपाल सम्बा चिन्छ सौ पी खुद दिल्लागा अष्टमी थो रेडियो नेपाल ख आन्यना दिस जिरुबी पाखे नेपाल भाषाया समाचार सरकार सुनसरियो सिराहा गोली कया सीमा छेज यता राहत वो क्षतिपूर्ति लल ह्यागु कोचिगुदु मिगो चुङ्गु मन्त्री परिषद बैठक सुनसरी झाँका प्रदर्शनिया झोले सिपी व खापा जुपिन्ता क्षतिपूर्ति राहत व वास्या व्यवस्था यागु कोचिनागु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री नापा सरकार प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई जानकारी ब्यादिल झाँका सुनसरी तीन ओसिरा छमायना पेमा मनुषी गुदु सरकार लगानी बोर्ड या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदे याङ्गी उक्याब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका नयाँ स्वीसा प्राध्यापक डाक्टर खड्क बहादुर केसी व दुज सचिव पदे प्राध्यापक डाक्टर रोजे श्रेष्ठ यता नियुक्त यागु कोचिनागु प्रवक्ता पोखरेल जानकारी ब्यादिगुदु अध्ययना बैठक तथ्याङ्क या नापाङ्गु संशोधन नियमावली 2081 स्वीकृति यागु बाल बालिका नापा या नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2081 संघीय संसद नापा दुत बिगु पशु स्यागु ला जाँच एन 2055 झोलिक दिए न्याङ्क छेलीको कोचिगुदु अध्ययना मन्त्री परिषद बैठक नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश 2054 खारेज आएको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति यात नेपाल पार वहन व गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड नापा स्वागु स्वीकृति लल ह्यागु कोचिनागु प्रवक्ता पोखरेललाई जानकारी ब्यादिल कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय कृषि लगायत आधुनिक व्यावसायिक ढेन्डे बला व आत्मनिर्भर देखिएको आज नापा राष्ट्रिय कृषि नीति 2083 जारी आगुदु संघीय शासन प्रणाली कथन देख अगुथु नीति खाद्य सुरक्षा खाद्य सम्प्रभुता कृषक देखो आय अभिवृद्धि कृषक उत्पादन वृद्धि आयात प्रतिस्थापन व निर्यात प्रवर्धन या त मु ठ्या बिगुदु नीति या विशेषण थगु धारणा पङ्का दिशा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी कृषि लागया विद्यमान हट्याता क घास ढिसी लागु उत्पादन जाइगु कृषि प्रणाली देखेको आजुया नीति थु ज्याजो हयागु कना दिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र

व्यवस्थित याना लिचोपिया पिकाको विशेषण व संसदीय कार्य प्रणाली या त अञ्च सेन्ला केगु नफु विशेषण सल यायगु सभामुखिया स्वकीय सचिवालय जानकारी बिगुदु राष्ट्रिय सभा या मिगचुङ्गु राष्ट्रिय सभा या बैठक ठाउँ चोने ट्याङ्गुडु थाउन हिने छताइजे झिङ्याको मिनेटे सिंह दरबारे चोनीको बैठके गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मन्त्रालय नपा स्वापु दुक नेस बी गुच्यातल दुसा संघीय संसद सचिवालय कथ महिला बाल बालिका लैङ्गिक व यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी मन्त्रालय नपा स्वापु दुगु नेस बी गुच्यातल दु राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्त मनसुना जागो विपद व्यवस्थापन सरकार या पूर्व तयारी विशेषज्ञ गृहमन्त्री अध्ययन कोसाला दिगु जहाज दुसा अथियाना कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी संक्रामक पशु लुए नियन्त्रण विधेयक 2083 सभा नपान दु त बिगु ज्याजो दु अथियाना थौहे थिथि न्यागु संसदीय समिति बैठक नचुने तेङ्गु दु वगु सूचक अर्थ महिला व सामाजिक मामिला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि व राज्य निर्देशक सिद्धान्त नीति व दायित्व या कार्यान्वयन अनुगमन व मूल्याङ्कन समिति या बैठक चुने तेङ्गुदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पार्टी सदस्यता प्रणाली या त डिजिटल या टेङ्गुदु पार्टी मिसन पार्टी जागरण अभियान कथा मिग सोनी गले प्रदेश कमिटी पार्टी मुख्यालय च्यासले गोसा गोकु सदस्यता नापाई या कार्य साला गोष्ठी थो विशेषण कोचना या गुख राष्ट्रिय सभा कथया संघीयता सबलीकरण व राष्ट्रिय सरोकार समिति बजारे नसा जोरियाइगु ज्ञान स्थित्य सुनिश्चित या त सरकार या त उजम्पिगुदु समिति हामी गचुङ्गो बैठक अन्त्यङ्क गुणस्तरीय ज्वलौँ व सेवा या अपुगो आपूर्ति व्यवस्था मिलेयना कृत्रिम अभाव नपाहाकुगु बजारे नियन्त्रण या त सरकार या त उजौँ बियागु समिति सभापति जयन्ती देवी राय जानकारी बियादिगुदु युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव सरकार दक्षी दुने देशे छगुलाख लजगा बुलङ्के गुज्याना सोनाको धया दिगुदु प्रतिनिधि सभा कथया उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति मिगचुङ्गु बैठके मन्त्री यादव फ्री भिसा फ्री टिकट प्रभावकारी पारदर्शी मुजुगु धासे खारेजी नीति ज्यायाना चोङको जानकारी व्यादिगुदुसा मन्त्री यादव वैदेशिक लजगा एन संशोधन यायता मन्त्रालय जुया चोनाको धया दिल अथे याना उगु बैठके घरेलु कामदार विदेशे छोएबले जी टू जी पाखे स्वपुदुगु देशे छोए मागु वैदेशिक लजगा ठगे जुपी मनु ते त मागु क्षतिपूर्ति लल ह्याता सरकार जुई मागु बिचा पङ्का दिल कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यसा आन्तरिक संवैधानिक विशेषण टिप्पणी याना नेपाल सरकार दति तथ्यहीन दोप बिगु मामुदुगु ज्यायाना सोङ्गु धयादिगुदु कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति मेघ चोङको बैठकै मन्त्री गौतम एमनेस्टी इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स वाच नापाया अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यसमा सर्वोच्च अदालत या त न्यायाधीश ते त राजनैतिक दबावमा राजीनामा बिता बाध्य याकगु धैगु विशेष संयुक्त प्रेस वक्तव्य या त कया कुङ खिना दिसे थुज्यागु महामदुगु सूचना थत्या चिके मागु धेया दिल अध्ययना मन्त्री गौतम न्यायपालिका नापा स्वापु तैगु संवेदनशील व नेपाया आन्तरिक संवैधानिक विशेषण टिप्पणी यागु अधिकार नेपाली नागरिकको स्वपुदुगु संवैधानिक निकाय त जक्क दुगु कना दिसे पिने चुङ्गु संस्था प्रमाण बिना दोपम बी त सहया मफैगु थया दिल बैठक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था त्यसमा सर्वोच्च अदालत या न्यायाधीश त्यता राजनीतिक दबावमा राजीनामा बिता बाध्य याकगु धैगु मङ्का विज्ञप्ति या स्पष्टीकरण मागे या त सरकार या त उजम्बिगुदु बैठक महिला बाल बालिका लैङ्गिक यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय या त एमनेस्टी इन्टरनेसनल इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट व ह्युमन राइट्स वाच पिथाङ्गु मङ्का विज्ञप्ति नापा आधिकारिक थल लल हाना स्वापुदुगु संस्था नापा स्पष्टीकरण फोने त उजौँ बियागु समिति सभापति समीक्षा बास्कोटान जानकारी ब्यादिल सांसद त्यसा देय ऐतिहासिक सांस्कृतिक व पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण बहविता सरकारी अध्ययन कोशाला दिगुदु राष्ट्रिय सभा कथया सार्वजनिक नीति व प्रत्यायोजित विधान समिति अम्हेको चङ्गु बैठके सांसद त्यसा प्रदेश पतिकम होतिन छगु पुरातात्विक सम्पदा विश्व सम्पदा सूची छ दुथ्या के त कुत या त सरकार या त इनाफ या से विश्व सम्पदा सूची छ सूचीकृत राष्ट्रिय सम्पदा तेगु समर्थने सरकार विशेष ज्याजोन्याके मागुली बबिया दिल नेपाल टेलिभिजन आ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नापा या दे तेके न्यागु उपकरण व सेवा स अनियमितता व कानुनी त्रुटि यागु क्यों से छानबिन समिति थगु प्रतिवेदन सरकार या त ल लागुदु नेपाल टेलिभिजन या

डिजिटल ट्रान्समिटर अडियो भिजुअल व ग्राफिक्स प्रणाली प्ले आउट अटोमेसन व अनलाइन प्लेटफर्म तेगु न्यागु विशेष निसुङ्गु छानबिन समिति 2083 मिगो सूचना व संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा नापान थगु प्रतिवेदन ल लागु कङ्गु असार एक गते डाक्टर सुदीप भट्टराय संयोजक गते संचार मन्त्रालय निसुङ्गु पेमा दुजा छानबिन समिति यता नेपाल टेलिभिजन थिति इले न्यागु उपकरण सफ्टवेयर व डिजिटल प्रणाली नापा स्वपुदुगु उजुरी प्रतिवेदन व सार्वजनिक सरोकार्य विषय तेगु तथ्य परक अध्ययन याना सूचनापा प्रतिवेदन दुत बिगु कार्यादेश ल लागु ख थ्यान्य संचार मन्त्रालय नेपाल टेलिभिजन या स्याटेलाइट ब्यान्ड विथ खरिद विशेषण निसुङ्गु समिति न थगु प्रतिवेदन सरकारी त ल लागु दु भूमि व्यवस्था सहकारी संघ मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मतदाता ना धल मुङ्केगु नीति मागु ग्वाली यता स्थानीय तह यता इनाप्यागुदु मन्त्रालय मिग फुक्क गाउँपालिका व नगरपालिका यता पौछोसे प्रदेश व जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यता मतदान ना धल मुङ्केता मागु ग्वाली समन्वय व सहजीकरण यता इनाप्यागु ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाललाई नेपाल व दक्षिण कोरिया दति हवाई सम्पर्क व्यापार पर्यटन शिक्षा प्रविधि व जनस्तरीय स्वपयता अन्त व्याके मागुली भव्या दिगुदु थगु सोधया कार्यकाल पुङ्क थगु देलिहा उनेता सना दिमा रादुर पाक तोयङ नापाम हिग थगुए मन्त्रालय नाप्लागु ज्याझोले वेकपी दति व्यापार स्वास्थ्य शिक्षा सहकार्य लागा तेता न्हजाके मागुली बियागु मन्त्री खनालिया निजी सचिवालय धागु ख प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय नागरिक या ख नेता भलसा बिगु कथन दे के त हेलो सरकार या त तब्या के त सनागु धागु दु थुक्या नीति तब्यागु अवधारणा पौ कार्ययोजना मस्यौदा देका सलाह नीति दुत बियागु हेलो सरकार शाखा उपसचिव कृष्ण सापकोटा जानकारी बिया दिल हाठ्या जागु सहकारी व्यवस्था हाथ्याजाको सहकारी व्यवस्थापन समिति शिव शिखर व पशुपति सहकार्य चिधङ्गु बचतकर्ता तेगु बचत लित बिगु ज्याका तगुदु समिति सदस्य सचिव रविन ढकाल कथ शिव शिखर या झिम्पेमा पशुपति सहकार्य निच्यामा बचतकर्ता तेर्स धेवा लितका खना सोङ्गुदु सरकार हाठ्याजाको सहकार्य ऋण असुलीसँग वोगु ढेवा हे पीडित बचतकर्ता तेत लित बियाचुनागु धथिका दिल सरकार इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइएसपी कम्पनी तेगु दूरसञ्चार सेवा शुल्क सलामी दस्तुर व ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आरटिडिसी बापत्या बकौत्या असुली या कुतन्याकगुदु बकौता देवा कर निर्धारण अनुमति नवीकरण नापा स्वपुदुगु ताइला निसिया कचवन हङ्केगु आज सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय स्वपु तगु व स्वपु तैपी दति सल न्याकुसे प्रक्रियागत ज्या न्याकगु ख सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा मिग इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पान या दुजपी नापा सल व्याका दिसे कानुन कथा पुले मागु कर व शुल्क न्याच्याना जुसा राज्य कोषे दाखिला या मागुली बब्या दिगु ख नेपालगञ्ज भैया पुरे अपा भट्टाया पखा दुना वोगुली निमा मजदुर सिगुदु वङ्गु सोमबार अपा भट्टाया पखा दुना ओब्ले तस्कङ खापा जुमा पिङ्याद दुमा राम फेरन कोरी वास्या झोले मिग सिगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके जानकारी बिगु दुसा थ्यान्य पखा दुना ओब्ले ङे निद दुमा वर्षादी लोध झाँका जुगु थासे सिगु ख गण्डकी प्रदेश थुगुसी आतक गुई गुगु फुटी सुई गुगु प्रतिशत सिना ज्या पुङ्क गुदु गण्डकी आतक सुई गोदो खुस खुगु हेक्टर भुखे सिना ज्या सिदगु प्रदेश कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय धागुदु आदेशम पिने बुख रसिया युक्रेन राजधानी किवे यागु आक्रमणे मोतिन निछमा मनु सिगु दुसा पिपेमा मनु घापा जुगु दु थुगुसी फुकन्सुया ज्ञाना पुगु हेका कथ रसिया आपालन ल्याखे ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्र व ड्रोन त के कगु ख विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो इबोला प्रकोप नापान ल्यागु नीति थिति तह सङ्ग्वालिया नीति आह्वान यासे आर्थिक अभाव या हुने रे प्रतिकार्य यागु क्षमता लिने लाना चङ्गु धागु दु डब्ल्युएचओ या कथ प्रकोप अझन नियन्त्रण सुइबे पिनेवना चोङगुली थुकियाता ग्वाली यायता सकलदति इनाफियागुदु आ मौसमी जानकारी थौ कोशी बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश पहाडी तराई लागाया कर्णाली प्रदेश पहाडी लागा नापा
मधेस प्रदेश या यको थासे मलना पल्हाप्सा तोया भतिचा तस्कौँ वाविगु सम्भावना दु बागमती गण्डकी प्रदेश या हिमाली पहाडी तराई या कोसी लागाया हिमाली पहाडी लागा मधेस प्रदेश व लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी व तराई लागाया छोको निगु थासे आफ्ना वा वैगु सम्भावना कुबीको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे गौसा ये सोनिगया क्वाज नी च्यागु फुटी निगु डिग्री सेल्सियस जति लुयागु खसा थाउनिने ये सोनिगया क्वाज निन हेगु निसे निङ्यागु डिग्री सेल्सियस जति लुइगु ढुकुमा दु थौ सुथे ये सोनिगले सुथे स्याङ्या त इजुया नि सोङ्गु मिनेटे लुयावगु सूर्य शनिल खुता इजुया ङेङेगु ङेङ्यागु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन चिता अहिले नेपाली भाषा या समाचार निनादिसा शुभ

शेरी के शरवतुई ngoto लासे जम्बुलिंकी दासना छोकने शेरी डोलुकी लेरिम सेनांगिन जुनो तुप शरवा अजुनुप इजुनुम तंग सेंगासाली तेरिला गमचोकला ताशिदलेक नमसंग जफुरी सेरमु चुजो जितांग कामाच्यांग आने जुन चुजोंग सेक्टोंगिन वाउ शेरी डोलुकी लेरिम खुरने शेरी डोलुकी लेरिम तोंगुप्ला आरिंगसंग आलेरिम दिनक्योंमा आंगस्रिंग लामा शेरपा तंग लक्सिपदाजा दे स्टुडियोला वन वाय

पाकिस्तानकी ब्रोडपिक जेकु रिम्बाला एम्बी मिमिरा टुकताङ सिगेलकी मिमिरा जी खाकी टोकपाला स्योर्ने नासागलुपिन खाकी टोकपा याङना एभलेन्सला स्योर्ने नासागलुप एम्बी शेरवतियो किलिपेम्बा शेर्पा गाउङ थिन्दु शेर्पा गेलु शेर्पा निमा शेर्पा तुरङ क्याने जम्बुलिङ दाराङ मिन खेपेल क्या नाङ्गुप ताङ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड तियो बङ्गी ज्याक नाङ्गुप निर्मल पूर्जा निम्स दाई तुरङ क्याने पूर्ण बहादुर गुरुङ ला कुदु छुई खोङतुई खाङबी मिला रेडियो नेपाल ताङ शेरी ढुलुकी ल्यारिमकी छोक्ने सिम्सु स्योबिन तुरङ क्याने ओमानकी नादिरा अल हार्थी अमेरिका कि मेलोरी गाइस पाकिस्तान कि सुहेल साखी ज्ञानक कि वाङ जोङ लासङ कुदु छोपिन दाङमालो खाकी टोकपाला स्योर्ने खाङरिजीको मितिवा नासागलुप्ती एम्बु त्रिरङमेन्दा क्याने जम्बुलिङ कि खाङरी सकुल लारङ छसे गिर्पु क्योन फङ वाय जम्बुलिङ लारङ मिङ एम्बी मिङ खाकी लुङबासिने ङोसिन वाय तिखालासङ दक्पी शेरवतीवा खाङरिजीको लाकाला एम्बु ताङ सिगेल कि मितिवा तेरिला रोक्रम कि तादासेक मङ्पुसिनाङ मङमु मितिवाला जोमोलोङ मोताङ एम्बी याम्बा खाङरी तियो जेकु लाका लम्सुजोन वाय तुग्रङ क्याने खाङरीला कलेला स्वरूप तियोला रोक्रम क्याने सुङक्युप कितुब्लासङ एम्बी शेर ब्रोडपिक जेकु रिम्बालासाङ खाङरी सखुल्ला बङी न्यामयुङोतु खाङरी सखुल्ला बङी छाक्लेन नङ्गु खाङरी जेकु मितुई ह्रक गनवाय खोङतिउ यम्बु तङ यम्बी खाङरी ठोसम सखुलकी लोग्युला यम्बी मिङला मङ ग्यासा जोनङवाय खोङतिउ नासागले यम्बी खाङरी ठोसमला ससे क्योनफङवाय याङलुङसाङ दुकै सेमदुकी तुसोला ब्रोडपिक जेकु रिम्बाला नासागुलुप तेरिला कुदुसुई खोङतिउ खाङबी मिला सेमसु स्योपिन लासे दि सेमदुकी तुसोला खाकी टपला स्योर्ने नासागलुप खोङतुई खाङबी मितिओला सेमसुसुई कुसुम फिल्मकी सिरिङ लामाकी लानङ्गुप सेमला दुङ्गल सिरुप लुचिक सेनङ स्योपकी टरिक्यानु है लासे सेन्द्रनाङ

रोकलम किथोप की तंग जुक थम्बला दुकोई ने तंग तिओ उमे जितुपला कांग किथोप की सिने नासम तंगोती खक्षन पनो लसे मी मी जी सुरुपति सो परला निमातिंग शोक इन तंग मी चो पला तिनासा दी सुरुप तम यदि दकुला हाक मकोई इन सिनांग दकपुनी मासु सेन बुदेकी तितु सोला ला काले मु तंग मिमांग तिओला सेम शुक फोर जितुप ला का तिओ किथोप सिंग मिमांग तुई नमसंग थेंसु की तंग दकपि मिंग ति नमसंग मोतोरी लसे ता आरिंग की लेरिम की तुसोती दुपुसलु तप की आरिंग की लेरिम तिंग शोक सेक सेनंगुपला लेंगे तिओला तिरिला थुशिशे shopping aring ki lerimla ngire chilo ngi tong chubjila chomolongmo la khaki tokpala shurne senburang loku dawata shi sherpala phepshop hurta kya winsinang tuso mandi kutapki khongde phep mathup thadiksing taungup japuri sermu khongla phepshune khongki nyamyung dio de jokusne lengge tiola shopping la se ngire lerimla tongu tang len tio nangdo nang sine sang lengge tiola shopping ngirangla tongu nangupla ngire ki email id ti sherpa program info @gmail.com in la se ta डॉक्टर थाकमनुरबु शेर्पा की थिनंगु थाकपा तेंजी लामा शेर्पा सिरिंग शेर्पा तंग किन्जो ओमो योलमोकी लानंगु खांग जिक सुरुप लुचिक सेनंग शुंग नालेरिम जिंचोंगमा आंग सिरिंग लामा शेर्पा संग गोंगबा शोप थुजिशे टच दिली

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झाझा सुनल झा मैथिली भाषामा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपालक लेल गणतन्त्र कोरिया के राजदूत एच ई पार्क तेङ विदाई भेट कयलनि अछि। राष्ट्रपति कार्यालयमा ओ आई विदि भेट कयलनि अछि। एहि अवसर पर नेपाल आ गणतन्त्र कोरिया बीच रहियाल द्विपक्षीय सम्बन्ध आपसी हित इच्छाक विषयमे बातचीत भेल राष्ट्रपति के कार्यालय जनौलक अछि। संगे राष्ट्रपति अपन कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न कयने प्रति गणतन्त्र कोरिया के राजदूत के बधाई सेहो देलनि अछि। राष्ट्रसभा सँ मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन में सरकार के पूर्व तैयारी संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सर्वसम्मति सँ स्वीकृत भेल अछि। आइ बैसल बैठक में सांसद कमला पंत प्रस्तुत कयने मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी संबंध में सरकार के ध्यानाकर्षण कराबला प्रस्ताव सभा के सर्वसम्मति सँ स्वीकृत कयलक अछि। सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल अध्यक्ष दहाल मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन में सरकार पूर्व तैयारी संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित विषय की प्राथमिकता के संग कार्यान्वयन करबाक लेल सरकार के निर्देशन देलन। अध्यक्ष दहाल हरेक आर्थिक वर्ष के पूष मशांत आ खार मशांत भीतर मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन आ कार्यान्वयन प्रगति विवरण सभा समक्ष पेश करबाक लेल सरकार के निर्देशन देलन। अहिना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उल्लेखित विषय के कार्यान्वयन के अनुगमन करबाक लेल संबंधित विषयगत समिति के ओ निर्देशन देलन। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करत नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता कमला पंत गृहमंत्री सुदन गुरुंग संग मनसून के समय बाढ़ भूस्खलन डुबान तथा हिमपात विस्फोट के बढ़ रहल जोखिम के संदर्भ में सरकार की तैयारी के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांग कलन। अहिना मनसून जन्य विपद के पूर्व सूचना के प्रभावकारी कार्यान्वयन जोखिमयुक्त बस्ती के स्थानांतरण तथा उद्धार जनशक्ति उपकरण खाद्यान्न दवाई आ स्थायी आवास के पूर्व तैयारी सुदृढ़ बनायल जेबाक चाही पर जोर दिलन। एहि प्रस्ताव पर सांसद सब मदन कुमारी शाह गरिमा सोमनाथ पुरतेल आ पदम बहादुर परियार समर्थन जनाबैत सरकार के ध्यानाकर्षण करौलन। प्रस्तुत प्रस्ताव पर के विचार विमर्श के क्रम में उठल विषय में जवाब दैत गृहमंत्री सुदन गुरुंग मनसून जन्य विपद व्यवस्थापन के पूर्व तैयारी के संबंध में सरकार के ध्यानाकर्षण भेल बतौलन। मंत्री गुरुंग विपद तथा मनसून पूर्व तैयारी प्रतिकार्य कार्ययोजना 2083 तर्जुमा कर कार्यान्वयन में आनल गेल। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त हो वाला मनसून जन्य गतिविधि के आधार पर मंत्रालय केंद्र से लकर जिला धर आवश्यक पूर्व तैयारी आ सतर्कता अपनबिताल जानकारी दिलन। अहिना राष्ट्रसभा के आज बैठक में कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी संक्रामक पशु रोग नियंत्रण विधेयक 2083 पेश कलन। विधेयक विषय पेश करत मंत्री चौधरी नेपाल के संविधान भाग 3 मौलिक हक अंतर्गत खाद्य संबंधी हक उपभोक्ता के हक स्वास्थ्य संबंधी हक स्वच्छ वातावरण के हक आ संपत्ति के हक संबंधी संवैधानिक व्यवस्था हिसाबे संघ प्रदेश आ स्थानीय तह बीच के समन्वय आ सहकार्य में पशु तथा माछ में संक्रामक रोग के रोकथाम नियंत्रण आ निवारण तथा उन्मूलन का पशु स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य आ वातावरण स्वास्थ्य संरक्षण करबाक लेल विधेयक आवश्यक रहल बतौलन। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक साउन 22 गते शुक्र दिन के 1:15 में बैसत। प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की पदोन्नति भेल 10 गोटे प्राविधिक प्रहरी अधिकृत के दर्जियानी चिन्ह प्रदान कयलनि अछि। आई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय में प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक सँ प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पद में 1 गोटे आ प्राविधिक प्रहरी न्याय उपरीक्षक सँ प्रहरी उपरीक्षक पद में 4 गोटे प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक सँ प्राविधिक प्रहरी न्याय उपरीक्षक पद में 4 गोटे आ प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ न्याय निरीक्षक सँ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पद में 1 गोटे क जम्मा 10 गोटे प्रहरी अधिकृत के दर्जियानी चिन्ह प्रदान कयलनि अछि। दर्जियानी चिन्ह द्वारा प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दामोदर कडेल प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षक में प्राविधिक अमरेन्द्र प्रसाद सिंह रामबाबू राणा अभय कुमार झा आ अनूप श्रेष्ठ प्राविधिक प्रहरी न्याय उपरीक्षक में निशा चौधरी संजीव दहाल रमेश कुमार शाह आ अंजन राज खरेल तथा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक मीन प्रसाद खत्री रहल छथि। आई दर्जियानी चिन्ह प्रदान करत प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की दैनिक सेवा के प्रभावकारी बनाबा एवं शांति सुरक्षा के व्यवस्थापन अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान लागत में प्रहरी कार्य के शीघ्र आ प्रभावकारी बनाबा वाला प्राविधिक समूह के महत्वपूर्ण भूमिका होयबाक चर्चा कयलनि। समारोह में पदोन्नति भेल प्रहरी अधिकृत सँ
प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दामोदर कडेल प्रहरी संगठन के गरिमा प्रतिष्ठा संगठन प्रति के विश्वास के उच्च बनावा में सदैव ईमानदार निष्पक्ष अनुशासित व्यावसायिक प्रविधि मैत्री आ सेवामुखी रहकर जिम्मेवारी निर्वाह कर के प्रतिबद्धता व्यक्त कल समारोह में वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत आ जवान सबके उपस्थिति रहल छल। सूचना तथा संचार मंत्रालय आम संचार क्षेत्र के समयानुकूल एकीकृत आ उत्तरदायी बनेबाक उद्देश्य के संग राष्ट्रीय आम संचार विधेयक तर्जुमा करबाक लेल तैयार कयल गेल अवधारणा पत्र सार्वजनिक कयलक अछि। मंत्रालय चालू आर्थिक वर्ष भीतरे ई विधेयक संसद में दर्ता करबाक लक्ष्य के संग आवश्यक तैयारी आगू बढ़ा रहल जनौलक अछि। सार्वजनिक कयल गेल अवधारणा पत्र में संविधान सुनिश्चित केने विचार तथा अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता संचार के हक आ सूचना के हक के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करैत सूचना प्रविधि के तीव्र विकास डिजिटल तथा ऑनलाइन संचार माध्यम के विस्तार और प्रसारण क्षेत्र के विविधीकरण के संबोधन करबाक लेल नया एकीकृत कानून आवश्यक भेल उल्लेख कयल गेल अछि। अखन के लेल हाल में प्रचलन में रहल छापाखाना तथा प्रकाशन संबंधी 2048 राष्ट्रीय प्रसारण 2049 श्रमजीवी पत्रकार संबंधी ऐन 2051 के प्रतिस्थापन करैत एकटा छाता कानून अनबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। मंत्रालय के हिसाबे अयन के सामान्य संशोधन क के मात्र अखन के आवश्यकता पूरा करब संभव नहीं भेला सा नया एकीकृत कानून आवश्यक भेल अछि। नया ऐन मार्फत आम संचार क्षेत्र के स्वच्छ स्वतंत्र पारदर्शी मर्यादित आ व्यावसायिक बनबैत लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सब सुदृढ़ करबाक अध्यक्ष लक्ष्य राखल गेल अछि। संघीय संचार संस्था के संस्थागत विकास उत्तरदायित्व सुशासन आ श्रमजीवी पत्रकार के हक हित सेवा सुविधा तथा सुरक्षा के समयानुकूल कानूनी आधार प्रदान कयल जात जनाल गेल अछि। सूचना तथा संचार प्रविधि नीति तथा राष्ट्रीय आम संचार नीति 2073 कार्यान्वयन के क्रम में देखल गेल आवश्यकता के संबोधन करबाक लेल नया कानून आवश्यक रहल मंत्रालय जनौलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धनसा में संचालित 32 बहुवर्षीय योजना मध्य अधिकांश योजना के निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुँचल अछि। पूर्वाधार विकास कार्यालय जनकपुर धाम के हिसाबे जाय मध्य बहुतो योजना चालू आर्थिक वर्ष भीतर संपन्न हेबाक अवस्था में पहुँचल अछि। कार्यालय के प्रमुख संजीव कुमार शाह के हिसाबे बहुवर्षीय योजना अंतर्गत संचालित एक निर्वाचन क्षेत्र सड़क कार्यक्रम सेहो अंतिम चरण में पहुँचल अछि। एहि कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5-5 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा पिचिंग करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। बहुवर्षीय योजना अंतर्गत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित जलाद नदी में पुल निर्माण तथा धनसा के भीमान महनगाछी किशनपुर सड़क में पिचिंग करबाक काज सम्पन्न भ चुकल कार्यालय जनौलक अछि। पूर्वाधार विकास कार्यालय गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में सड़क तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति हासिल कयने जनौलक अछि। कार्यालय के हिसाबे एहि अवधि में धनसा के विभिन्न स्थान में 57 किलोमीटर सड़क ढलान 22 कलभट निर्माण 22.5 किलोमीटर सड़क ग्राविल तथा 1 किलोमीटर सड़क पिचिंग कयल गेल अछि। एहि के संगे 7 किलोमीटर सड़क के मरम्मत संभार कार्य सेहो सम्पन्न कयल गेल। कार्यालय प्रमुख शाह एहि के जानकारी देलनि। खाना बनावला गैस के कृत्रिम अभाव सृजना के निहार के प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई कयल जात। जिला प्रशासन कार्यालय परसा के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी कृष्ण थापा आई ई बात बतौलन अछि। बाजार में गैस के अभाव करावला के काला बाजार तथा किछ अन्य सामाजिक अपराध तथा समाज ऐन 2032 एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम माल समान जफत भारी जरिमाना आ जेल सजाए के सेहो कड़ा कानूनी कयल जा सकैत अछि एहन व्यवस्था रहल अछि। सरलाही के सदर मुकाम मलगवा में अनुदान के खाद में कालाबाजारी का बिक्री कैनिहार 3 गोटा के पकड़लक अछि। मलगवा नगर पालिका वार्ड नंबर 10 में रहल कृष्ण जनरल स्टोर किराना दुकान से अनाधिकृत रूप में कालाबाजारी कर मॉल खाद बिक्री के आरोप में मलंगवा 7 निवासी 23 वर्षीय अभिनय राय आ 20 वर्षीय अभिनंदन राय के पकड़ल गेल अछि। हुनका सबके पूछताछ कला पर अनुमति बिना DAP खाद 3,500 टका धैर में बिक्री कर रहल स्वीकार कलन अछि। प्रहरी हुनका सबके दुकान के खान तलाशी लेला पर 4 बोरा DAP आ 1 यूरिया खाद बरामद कलक अछि। खाद के मलंगवा नगर पालिका वार्ड नंबर 4 शिवसागर चौक में 28 वर्षीय राहुल गुप्ता संचालन कने दुकान से 3,200 टका में खरीद कर आने स्वयं सब 3,500 टका में बिक्री कर रहल बयान देने अछि। अभिनय अभिनंदन के बयान के आधार पर प्रहरी राहुल के सेहो नियंत्रण में लेने अछि। राहुल के दुकान से सेहो 7 बोरा यूरिया खाद बरामद कयल गेल। प्रहरी
जनौलक अछि। तीनू गोटे विरुद्ध कालाबाजारी सम्बन्धी कसूरमे जिला प्रशासन कार्यालय सरलाहीसँ 7 दिन म्याद थपक अनुसन्धान आगू बढ़ायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के प्रवक्ता एवं DSP वेद प्रसाद गौतम एहि की जानकारी देलनि अछि। आब मौसम समाचार। अखन देशे भर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल अछि। अखन मानसून के निमचापीय रेखा सरदर स्थान सँ किछु उत्तर दिस नेपाल के तराई भूभाग नजदीक रहल अछि। अखन देशे भर साधारणतः बादल लागल अछि। अखन बागमती आ गंडकी प्रदेश के किछु स्थान में तथा कोसी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछु स्थान में आ लुम्बिनी प्रदेश के 1-2 स्थान में मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा भ रहल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम विभाग जनौलक अछि। अहिना का आइ राति देशे भर साधारणतः बादल लागत। देश के हिमालय भूभाग के किछु स्थान में मध्यम धरि के वर्षा आ हिमपात के संभावना अछि। कोसी बागमती गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी आ तराई भूभाग संगे मध्य प्रदेश के किछु स्थान में मेघगर्जन आ ठनका सहित मध्यम वर्षा के संभावना अछि। विभाग कोसी बागमती आ गंडकी प्रदेश के हिमालय आ पहाड़ी भूभाग तथा लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी आ तराई भूभाग के 1-2 स्थान में भारी से लक अधिक भारी वर्षा के संभावना रहल जनौलक अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सँ सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने गैस की कमी, कालाबाजारी पर नियंत्रण, स्वास्थ्य बीमा के प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार का कराया ध्यानाकर्षण, नेपाली कांग्रेस के आधिकारिकता विवाद से जुड़े मामलों में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, परराष्ट्र मंत्रालय भाद्र 1 से विदेश जाने वाले नेपाली नागरिकों के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण शुरू करेगा ऑनलाइन माध्यम से, काठमांडू घाटी की यातायात समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक गुरु योजना मास्टर प्लान सार्वजनिक, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज समुद्री मार्ग को लेकर ईरान और ओमान के बीच होने जा रहा है समझौता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा ने मानसून जनित आपदा प्रबंधन में सरकार की पूर्व तैयारी से संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। सदन ने सरकार को प्रस्ताव में उल्लिखित सुझावों को प्राथमिकता के साथ लागू करने तथा प्रत्येक वर्ष पौष और अषाढ़ के अंत तक आपदा तैयारी एवं प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने कहा है कि सरकार ने मानसून आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रतिकार कार्य योजना 2083 लागू कर दी है और मौसम विभाग की जानकारी के आधार पर केंद्र से जिला स्तर तक आवश्यक तैयारी की जा रही है। इसी तरह राष्ट्रीय सभा में कृषि, वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने संक्रामक पशु रोग नियंत्रक नियंत्रण विधेयक 2083 पेश किया। उन्होंने कहा कि पशु तथा मछलियों में संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण तथा पशुजन्य उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने कहा है कि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार सक्रिय है तथा हत्या, हिंसा और दुष्कर्म जैसे मामलों की चरणबद्ध जांच की जा रही है। उन्होंने युवाओं में बढ़ती निराशा की समस्या से निपटने के लिए तीनों स्तर की सरकारों के समन्वय से काम करने की बात कही। वहीं महिला, बाल बालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीतावादी ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में लैंगिक हिंसा रोकने के लिए प्रविधि आधारित सुरक्षा प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय सभा में सांसदों ने गैस की कमी, कालाबाजारी पर नियंत्रण, स्वास्थ्य बीमा के प्रभावकारी क्रियान्वयन तथा जंगली सुअरों से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली कांग्रेस की आधिकारिकता विवाद से जुड़े मामले में पुनर्विचार की अनुमति दे दी है। प्रधान न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने पूर्व सभापति शेर बहादुर देवबा की याचिका पर पुनर्विचार की अनुमति दी। इसके साथ ही विशेष महाधिवेशन से निर्वाचित सभापति गगन थापा के नेतृत्व वाली कार्य समिति को मान्यता देने वाले पहले के फैसले पर अब दोबारा सुनवाई होगी। परराष्ट्र मंत्रालय भाद्र 1 गते से विदेश जाने वाले नेपाली नागरिकों के दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन काउंसुलर प्रमाणीकरण आवेदन प्रणाली शुरू करेगा। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि नई व्यवस्था से नागरिकों को दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए काठमांडू नहीं आना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। मंत्रालय के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान और समय चयन की सुविधा मिलने से सेवा अधिक सरल और सेवाग्राही अनुकूल बनेगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। काठमाडौँ घाटी की यातायात व्यवस्था में दीर्घकालिक सुधार के लिए एक मास्टर प्लान गुरु योजना सार्वजनिक किया गया है। योजना में महाराजगंज और चाबहिल गौशाला अंडरपास, चाबहिल बागमती और त्रिपुरेश्वर मैतीघर फ्लाईओवर, विष्णुमती नदी तटीय मार्ग, चौड़ी रिंग रोड तथा बागमती कॉरिडोर के उन्नयन जैसी परियोजनाएं शामिल है। अधिकारियों के अनुसार इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2050 तक काठमांडू घाटी की परिवहन व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। सूचना तथा संचार मंत्रालय ने मीडिया क्षेत्र के समयानुकूल, एकीकृत और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आम संचार विधेयक का अवधारणा पत्र सार्वजनिक किया है। मंत्रालय ने आज कहा है कि चालू आर्थिक वर्ष के भीतर प्रेस प्रसारण और श्रमजीवी पत्रकार संबंधी मौजूदा कानूनों की जगह एकीकृत कानून लाने के लिए विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। नए कानून में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार तथा डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया की आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्री निशा मेहता ने कहा कि सरकार इस वर्ष कोसी प्रदेश में अपना सरकारी नेत्र अस्पताल शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कानून में संशोधन कर वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि नेपाल स्वास्थ्य पर्यटन का केंद्र बन सके। संसदीय समिति की बैठक में सांसदों ने गरीबों के लिए आरक्षित अस्पताल बेड और निशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करने तथा सभी 7 प्रदेशों में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल स्थापित करने की मांग की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान और ओमान के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही के लिए नए पारवहन मार्ग पर समझौता अंतिम चरण में पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच नए समुद्री मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों पर सहमति बन गई है और संयुक्त घोषणा की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत फारस की खाड़ी में प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग समुद्री मार्ग निर्धारित किए जाएंगे, जिससे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय तनाव कम करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि समझौते के कुछ तकनीकी और राजनीतिक पहलुओं पर अभी भी चर्चा जारी है और अंतिम स्वीकृति मिलना बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जल मार्ग है, जहां से दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्ग से गुजरता है। इसलिए इस समझौते को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा की बैठक में सांसदों ने गैस की कमी, कालाबाजारी पर नियंत्रण, स्वास्थ्य बीमा के प्रभावकारी क्रियान्वयन सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार का कराया ध्यानाकर्षण, नेपाली कांग्रेस की आधिकारिकता विवाद से जुड़े मामलों में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने दी है अनुमति, परराष्ट्र मंत्रालय भाद्र 1 से विदेश जाने वाले नेपाली नागरिकों के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण शुरू करेगा ऑनलाइन माध्यम से, काठमांडू घाटी की यातायात समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक गुरु योजना मास्टर प्लान सार्वजनिक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समुद्री मार्ग को लेकर ईरान और ओमान के बीच होने जा रहा है समझौता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
4: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नुपर्ने होइन र?
5: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
3: *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
6: झन्डु आयुर्वेद,
7: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झन्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
6: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
7: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
6: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसिनको समेत सुविधा छ।
7: झन्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
8: कुनै पनि कारणले उत्पन्न हुने हिंसात्मक घटनाले जनधनको क्षति मात्र होइन, समाजमा वर्षौंदेखि कायम रहेको विश्वास, भाइचारा र सद्भावमा समेत गहिरो चोट पुर्याउँछ। संयमता, धैर्यता र जिम्मेवार नागरिकको व्यवहार नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
9: अशान्ति फैलाउने प्रयास प्राय अफवाह, भ्रामक सूचना र उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि समाचार, फोटो वा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्दैमा त्यसलाई सत्य ठान्नु हुँदैन। आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट पुष्टि नगरी कुनै पनि सामग्री सेयर नगर्नुहोस्। जात, धर्म, भाषा र समुदायका नाममा घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र उत्तेजक टिप्पणीबाट टाढा रहनुहोस्। याद राखौँ, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एउटा गैर जिम्मेवार पोस्टले समाजमा ठूलो तनाव सिर्जना गर्न सक्छ भने एउटा जिम्मेवार व्यवहारले शान्ति कायम राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ।
8: कुनै विवाद वा समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकाय, स्थानीय प्रशासन वा समुदायका अगुवासँग समन्वय गरी शान्तिपूर्ण संवादबाट समाधान खोजौ।
9: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालको अनुरोध।
10: वर्षा यामसँगै जंगल, पाखा, काठका टुटा र खाली चौरहरूमा थरी थरीका च्याउ उम्रन्छन्।
11: केही च्याउ खान हुने, केही च्याउ खान नहुने विषालु हुन्छन्।
10: खान हुने र खान नहुने विषालु च्याउ चिन्न गाह्रो हुन्छ।
11: नचिनेको जंगली र जथाभावी उम्रेका च्याउ खानाले ज्यान समेत जान सक्छ।
10: होसियारी अपनाऊ, नचिनेको जंगली च्याउ नखाऊ।

आंखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आंखों में मंजिल थी, गिरे फिर भी संभल गए। आंधियों में इतना दम था नहीं, चिराग तो हवाओं में भी जल गए। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आप सबके प्यार व मिठास परे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा में, और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। और तकनीकी तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं प्राविधिक मित्र पुष्प रत्न वज्राचार्य जी। दोस्तों, मीटिंग में 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलो हर्ज के साथ साथ FM बैंड 98, 100 और 103 मेगा हर्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np और www.onlineradionepal.gov.np, साथ ही www.psbnepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरिमा कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। साथ ही इसे आप रेडियो नेपाल के मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से मित्र मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव देख भी रहे हैं। तो जो नहीं देख रहे हैं और वो भी देखना चाहते हैं, तो मधुरिमा कार्यक्रम के फेसबुक पेज मधुरिमा हिंदी को लाइक और फॉलो करें, ताकि जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कार्यक्रम के लाइव वीडियो के साथ जुड़ जाएं और अपने मन की बात लाइव कमेंट के जरिए साझा कर पाएं। और आप यदि किसी कारणवश लाइव न भी देख पाएं तो बाद में भी इसे मधुरिमा हिंदी फेसबुक पेज पर देख सकेंगे, और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बहुत से नए मित्र रेडियो नेपाल के साथ जुड़ें। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी तब्दीली हुई है, क्योंकि ये संभवतः फेसबुक लाइव जो है वो हर हफ्ते नहीं आ पाएगा, तो अल्टरनेट में, एकांतर में जो है ये फेसबुक लाइव हम आ पाएंगे। तो एक साथ जब भी हम लाइव आएंगे फेसबुक पेज पर, तो फ़ोन और पत्र दोनों एक साथ होंगे, कुछ फ़ोन भी रखेंगे, कुछ पत्र भी रखेंगे, तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन कुछ आज भी है। और पहले हम फ़ोन की फरमाइश पूरी करने से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर लाइव बातचीत करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 01421 और 01411736। और अगर आप नेपाल से बाहर के श्रोता हैं और हमें फ़ोन करना चाहते हैं, तो आपको डायल करना होगा +97714211721 या 4211736। एक बार फिर से सुन लें, +97714211721 या फिर +97714211736। राम पुकार राय जी हैं दीप ही रोथड़ से, उन्होंने फ़ोन पर कहा था और मुझे स्वतंत्रता दी थी कि कोई भी भक्ति गीत सुना दे, तो हमने अपनी ओर से ये गाना रखा है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि गाना आपको कैसा लगा, ये भजन आपको कैसा लगा। तो आप सबके लिए ये भजन।

0: और ये भजन आपने सुना आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में फिल्म गीत गाता चल से, जो कि सन 1975 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन हैं, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं और बहुत बड़ा फैन हूं उनका। और इसी बीच कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके साथ बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग एंड जय गुरुदेव।
0: जय गुरुदेव जी, कहाँ से कौन बोल रहे हैं?
1: जय हो महादेव, जय हो महादेव,
0: जय महादेव।
1: मैं बोल रहा हूँ रुपेश कुमार महतो, मध्य प्रदेश सिरहा कलहन, सिरहा कलहन से बोल रहा हूँ।
0: रुपेश जी कैसे हैं? सिरहा के क्या हालचाल है ये जरूर बताएं आप।
1: सिरहा का हालचाल क्या बतला, क्या बताइए
0: जी जी।
1: ये दो चार दिन पहले एक दो लोग मौत हो गया, एक
0: जी जी वो घटना बड़ी दुखद घटना हुई थी, इन सबसे हम वाकिफ हैं जी। फिलहाल कैसा है?
1: अभी तो शांत है,
0: अभी शांत है। चलिए भाईचारा बनाए रखें, देखिए समुदाय सब मिलकर जिस तरह से हम लोग पहले थे उसी तरह से सब रहा जाए,
1: बनाकर जो चलाएगा चाहे वो जैसा भी धर्म हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कुछ इस तरह के
1: इस्लाम लंबी धर्म
0: जी बिल्कुल, कुछ इस तरह के उपद्रवी तत्व होते हैं, उच्छृंखल तत्व होते हैं, हर धर्म में हो सकते हैं, पर जो भी हो, जो हुआ वो बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हाँ अब
1: जी,
0: यही हमारी दुआ है, शुभकामनाएं हैं
1: सर जी।
0: जी जी
1: हम लोग को ये लग रहा है विभेद क्यों करिएगा हम लोग। अरे इस्लामवादी लोगों ने चार चार बेर पांच पांच बेर मनोरंजन कर लेगा, आ क्या हिंदू लोग का मनोरंजन करना नहीं मना है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जिस किसी भी धर्म में है, वो तो इस्लाम में हो, बौद्ध में हो, हिंदू में हो, जिस किसी भी धर्म में इस तरह के तत्व हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर होते हैं, उच्छृंखलताएं बढ़ी हैं, चंचलता बढ़ी है, लोगों में संयम की कमी हुई है, धीरे धीरे ये सब कमी होती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारी बातें हम आपसे फोन खर्चा करवा कर भी नहीं सकते। तो बताएं कि कोई गाना सुनना चाहेंगे, कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: हमको गाना सुनना तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम जो हम लोग सुनता है ना।
0: जी जी
1: सिस्टर भी चलाता था कार्यक्रम, सीमा सिस्टर, रमिता सिस्टर
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो भी हम लोग सुनता था, आपको भी सुनता था पहली बार
0: जी,
1: पहले बार तो हम सुनता था, सुन रहा था।
0: रमिता जी अभी भी चलाती हैं, पर वो फेसबुक लाइव नहीं आती और वो सीधे ऑनर चलाती हैं रेडियो में। एक हफ्ते मैं चलाता हूँ तो एक श्रृंखला वो चलाती है, इस तरह से चलता है।
1: गाना हम सुना दे रहा हूँ प्रतिभा
0: जी। जी श्योर सुनाए।

0: हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। छोटा सा हम गाना गाकर सुना दिया,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लगा रुपेश जी, आपने जो भी गाया दिल से गाया, बड़ा क्यूट गाया आपने।
0: एक तो गाना और गाना का मोल था, लेकिन करेंगे क्या, सुना दीजिएगा, सुना दिए।
1: हाँ छोटा सा जी सुना है,
0: छोटा सा। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का, संकेत मिलन के, भूल न जाना मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया,
0: जब शाम ढले आना।
1: रुपेश जी बहुत बढ़िया, ये तो जरूर लगा कि आप गीत के बड़े पारखी हैं और बड़े शौकीन हैं, और आपने एक हद तक अच्छा गाया भी। कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
0: गाना हमको सुना दीजिए ना।
1: कौन सा?
0: अभी तो सावन के महीना है, जो हमारा एक तो भजन है
1: जी, कौन सा?
0: गुलशन कुमार का निर्माता किया गया फिल्म है, चल रे कवरिया सिंचे धाम का,
1: चल रे कवरिया जी, कौन सा?
0: चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाओ में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले,

0: चल रे कवरिया शिव के धाम, ऐसा भी गाना हमको बजा दीजिए नया कि हम झूम पाए, है ना।
1: जरूर सुनवाएंगे, जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी हमें फोन करने के लिए। जी बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहे और फोन भी करते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: करेंगे करेंगे।
1: और ये थे रुपेश जी शिरहा से, और बड़े बिंदास इंसान लगे हमें। और श्याम सुंदर महेश्वरी जी की कुछ लिखी हुई चीजें हैं, फारबिसगंज बिहार से हैं वो, कि पैसा अगर जेब में हो तो वो सबसे बड़ी ताकत है, और पैसा अगर दिमाग में हो तो वो सबसे बड़ी कमजोरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। इसी तरह बिट्टू राज आनंद जी हैं मानिकपुर फुलकाहा अररिया से, बिहार भारत से। इन्होंने लिखा है कि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और इसी तरह नूरुल हुदा लश्कर जी हैं, इन्होंने लिखा है सर नमस्कार, आप कैसे हैं, जरूर आप अच्छे होंगे, आप मुझे गाना सुना दीजिए ऐ मेरे हमसफर एक जरा इंतजार। क्या बात है, हम लाला उत्तर जशनाबाद असम भारत से आपको देख रहे हैं। चलिए नूरुल जी, आपकी फरमाइश को बिना देरी के पूरी करते हैं, और मेरा भी ये फेवरेट सॉन्ग है, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: ये गाना आपने सुना फिल्म कयामत से कयामत तक से, जो कि सन 1988 में रिलीज हुई थी उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाजों में। इसके गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी और संगीतकार आनंद मिलिंद। और फिर से कोई श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मोजिमा में। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं सुनसरी दूबी प्रस्ट ऑफिस से।
0: दूबी प्रस्ट ऑफिस से, सुनसरी से जी? जी वैद्यनाथ जी।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: हाँ जी। वैद्यनाथ या
1: वैजनाथ?
0: वैजनाथ। चलिए वैजनाथ जी, कैसे हैं?
1: एकदम बिल्कुल सही है, अपना कहिए
0: जी। ठीक हूँ। वैद्यनाथ, वैद्यनाथ सिंह ना?
1: नहीं, चौधरी,
0: सॉरी चौधरी। हाँ हाँ
1: हाँ
0: हाँ। वैद्यनाथ जी, और कुछ पेश करना जी?
1: एक बात, इको क्यों आ रहा है? जब भी इको आता है हमारे मोबाइल में।
0: अच्छा, आप मोबाइल बगल में बज रहा है क्या?
1: नहीं, मोबाइल नहीं बज रहा है।
0: अच्छा, तो कभी कभी आता है ये हमारे मोबाइल में भी, हम आम बातचीत भी करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, ये टेक्निकल समस्या हो सकती है।
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा जी जी, कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: हाँ, पेश तो जरूर करेंगे, जब आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ तो पेश करना अच्छा बात है। परंतु ये बात है, आप लोग से बात करने से बहुत खुशी लग रहा है
0: जी, मुझे भी बड़ा मजा आता है जी।
1: हाँ जी, तो फिर कई साप्ताहिक कार्यक्रम इसमें माइनस हो गए, जो फोनिंग कार्यक्रम नहीं हो लग रहा था
0: जी। अब आपने शायद शुरू से अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि अब एक श्रृंखला जो है बीच में वो फेसबुक लाइव नहीं होता है, लेकिन उसके उसके बाद जो फिर फेसबुक लाइव भी होगा और फोन भी लेंगे, पत्र भी पढ़ेंगे,
1: जैसे कि दोनों एक साथ चलेगा।
0: दोनों ही एक साथ चलेगा? हाँ, कुछ पत्र भी होंगे कुछ।
1: अच्छा, तो रमिता मैम का क्या समाचार है? तो वो आता ही नहीं थी।
0: हाँ, वो चलाती हैं, अब हम अकेले अकेले चलाते हैं तो वो लाइव नहीं आती।
1: ठीक, राइट जी।
0: तो गर्मी है ना?
1: गर्मी तो है सर।
0: इस वजह से जी, तो कुछ पेश करने वाले थे।
1: इसमें एक गीत प्रस्तुत करेंगे है ना
0: जी, इरशाद।
1: हाँ, ये एक भजन प्रस्तुत करते हैं, क्यों तो इस समय अभी शिव का वो समय है ना, तो मैं एक भजन प्रस्तुत करेंगे
0: जी, सुनाए।
1: जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरे कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरी रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम के ज्योत ने सारा हर लिया समस मेरा। नमो शंकरा, आदि देव शंकरा, रुद्र देव है महेश्वरा, सृष्टि

0: वाह क्या बात है।
1: सोचिया हो जिस तरह मेरे मन में संकरा, तू बरसा है उस तरह मेरा भरम कहीं जाने क्या बुरा है क्या भला, अर्थ क्या नहीं

0: बहुत बढ़िया गाया आपने रूपेश वैजनाथ जी, बढ़िया गाते हैं आप। आप रियाज व्याज जी करते हैं?
1: हाँ जी,
0: रियाज वगैरह करते हैं, रियाज हारमोनियम पे?
1: Sometimes
0: करते हैं। चलिए आप रियाज क्या करें, आपका फ्यूचर हो सकता है इसमें, बढ़िया गाते हैं, सच में बढ़िया गाते हैं।
1: आप कोशिश करें, आप इस तरह से निर्देशन दिए तो हमको खुशी लग रहा है, ठीक है ना?
0: बहुत बढ़िया, मजा आ गया, इसलिए मैंने आपको रोका नहीं। हालांकि इतना लंबा गाना हम अलाउ नहीं करते, लेकिन आपने बहुत बढ़िया गाया।
1: हम भी लंबा नहीं गाना चाहता हूँ, क्यों तो एक करी।
0: हाँ कोई बात नहीं, पर बढ़िया। हाँ, अच्छा तो जी, कोई गाना फरमाइश करना चाहेंगे?
1: एक गीत हमको, एक भजन है, कौन सा भजन है लगे,
0: किसका गाया हुआ?
1: अच्छा एक गाना भजन सुना दीजिए ना
0: जी। कौन सा?
1: यही भजन सुना दीजिए भले,
0: शंकरा वाला।
1: हाँ जी,
0: ये किस फिल्म का है पता है आपको?
1: फिल्म को मुझे मालूम नहीं हुआ, आपको उसमें
0: मैं देख लूंगा, मैं खोज लूंगा,
1: निकल जाएगा ये बहुत जल्दी।
0: हाँ मैं खोज लूंगा, कोई बात नहीं, इतनी मेहनत तो मैं कर ही सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे वैजनाथ चौधरी जी, बहुत बढ़िया गाया इन्होंने, आप सबने सुना ही है। और फिर से हम एक संदेश लेंगे, ये संदेश है ऋषि मिश्रा जी का जलेश्वर से। इन्होंने लिखा है कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। क्या बात है। और ये छोटी सी पंक्ति इन्होंने लिखी है और फरमाइश की है कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेशी घर वापस आए। इस गाने को सुना दें तो बिना देरी के सुनते हैं जी गीत।

0: और ये गीत आपने सुना फिल्म निगाहें से, जो कि सन 1989 में रिलीज हुई थी मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। एक फोन हम और लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन?
1: हम बोल रहे हैं धरान से, वीरेंद्र प्रसाद सिंह।
0: वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी, हाँ, मैं
1: गर्ल्स हॉस्टल से, धरान गोपाल के
0: गर्ल्स हॉस्टल से जी। कैसे हैं वीरेंद्र जी?
1: ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप लोग कैसे? ज्यादा एक दो महीना से तो बात ही नहीं हुआ, कार्यक्रम तो सुनते थे, फोन ही नहीं लगता था।
0: फोन नहीं लगता था, हाँ, अक्सर ये समस्या हो जाती है। वैसे धरान के क्या हाल चाल है सुनसरी के?
1: सुनसरी ठीक है, बढ़िया ही है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, बढ़िया से ही चलता है धरान, बहुत बढ़िया है। अभी
0: धरान
1: यहाँ पे गर्मी अभी बहुत था, काफी गर्मी था।
0: अच्छा अच्छा, हाँ, वो तराई में थोड़ी सी गर्मी तो होगी ही, और ये बरसाती गर्मी ना और भी खतरनाक होती है, मुझे पता है, मैं तराई का हूँ तो मुझे पता है। तो ये होता है जी। कुछ पेश करना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कार्यक्रम में क्या, एक तो गीत सुनना था बादल फिल्म का।
0: बादल फिल्म का कौन सा?
1: ओ मिलने से डरता है इकरार हो न जाए, ना मिलू ज्यादा प्यार हो न जाए।
0: क्या बात है, क्या बात है, जरूर सुनवाएंगे इस गाने को। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी।
1: और सुनिए ना,
0: हाँ हाँ,
1: ऐसे तो मेरा घर बरदंगा मोरंग में फिलहाल, और मेरा बेटी यहीं पे पढ़ता है महेंद्र कैंपस में।
0: अच्छा अच्छा, किस क्लास में पढ़ती है बेटी?
1: वो बैचलर कर रहा है, एक वर्ष हो गया और दो वर्ष बाकी है।
0: बैचलर कर रही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बैचलर किस विषय से कर रही है वो?
1: वो क्या बोलते हैं, बीए, मतलब वो बैंक का काम नहीं होता है, बीए वो
0: कॉमर्स पढ़ रही है, मैनेजमेंट पढ़ रही है। चलिए अच्छी बात है। देखिए मैनेजमेंट आज बड़ी प्रोफेशनल चीज है, अच्छा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़वा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं हैं, बढ़िया बने आगे चलकर।
1: ठीक है सर, ठीक है, नमस्ते।
0: नमस्कार जी। और ये थे वीरेंद्र सिंह जी, बड़े अच्छे इंसान हैं। और कुछ संदेश और भी हैं, और ये है अभिषेक झा जी का संदेश है, पत्र है जनकपुर से, और इन्होंने लिखा है कि चलो आज फिर थोड़ा मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। क्या बात है, जैसा भी हूं, अच्छा या बुरा अपने लिए हूं, मैं खुद को नहीं देखता औरों की नजर से। बहुत खूब, बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम होता है कि बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम होता है, हम उस रास्ते नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। क्या बात है, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस वाली शायरी है। और बड़ी बड़े प्यारे गाने की फरमाइश इन्होंने की है, मेरा भी ये फेवरेट है, और कितना भी सुनता हूं मन मेरा भरता नहीं है। तो आप खुद सुने कि यह गाना है कौन सा।

0: एक बात बोलूं? शादी के जोड़े में तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि तुम्हारे एक एक अंग को अपने प्यार के जेवर से सजा दूं, दुल्हन की तरह।
1: दुल्हन का सबसे बड़ा जेवर उसकी मांग का सिंदूर होता है, और देखो ना, वही नहीं है मेरे पास।

ये गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में फिल्म आई मिलन की रात से, जो कि सन 1991 में रिलीज हुई थी है। इसके गीतकार हैं समीर और संगीतकार फिर से आनंद मिलिंद। और हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में आ चुके हैं, लेकिन एक गाना हम सुनेंगे जरूर। और संजीव दाहाल जी हैं बालकोट भक्तपुर से, उन्होंने फोन से इस गाने की फरमाइश की थी, तो इस गाने को हम रखेंगे जरूर। लेकिन इस गाने को रखने से पहले अब हम सुनेंगे अलका याज्ञिक और उदित नारायण की आवाज में ये गीत फिल्म राजा से। इसके गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। लेकिन इस गाने को रखने से पहले और आप सबसे विदा लेने से पहले कहना चाहते हैं, तो दोस्तों ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेर व शायरी, कविता, गजल, जोक्स जरूर शामिल करें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा, रेडियो नेपाल, सिंहदरबार, काठमांडू, पोस्टबॉक्स नंबर 634, ईमेल पता madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपनी बातें इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा www.facebook.com/madhurima-hindi। और इसी गाने को रखते हुए प्राविधिक मित्र पुष्परत्न वज्राचार्य जी के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र आज की श्रृंखला से विदा चाहते हैं। सुनते रहे रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।